0: ଜୀବନକୁ ଏକ ନାଟକ ଭାବେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, କହିଥିଲେ ପ୍ଲାଟୋ। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଷ୍ଟୁଡିଓ ଘଡ଼ିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସକାଳ 6 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରିଲେ କରିଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମେ ଆକର୍ଷତା ସିଂହ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरण अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हिंदीरे संवाद सुनिले रिली करी सुनाइलु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्ररो आकाशवाणी समलपुर आरंभ करछु भक्ति संगीतर विशेष कार्यक्रम वंदना।

0: ओत कु हासांगे संग नाही है वो, ओत कु हासांगे हो संग नाही है वो, मुहले भी है वो कली कली कली आई थी लिया दे तुमर मोरा बुल मोते नाही देवो नाही देवो गली कल कली की नाही कहे वो नाही हो बोली कली हो नाही हो बोली कली मल मली के नाही कहे वो नाही जपरा बुली सते नाही जपरा बुली दल दली के भाई नाही डेगी देवो दल दली के तो नाही डेगी देवो नाही नो पैन बोली
1: संबलपुरी गीत शुणिले कंठशिल्पी थिले विवेकानंद पाणिग्राही एवं अशोक कुमार सोना गीतगुडी रचना करथिले उदयनाथ दर्जी एवं गणेशराम सेठ आकाशवाणी संबलपुर स्टूडियो घड़ी वर्तमान समय सकाळ 8:00 बजिबाकु जाउछि प्रथमे हिंदी एवं परे इंग्रजी संवाद शुणन्तु रिले करुछु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्ररो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज पीसीपीआईआर और सरिगाम जीआईडीसी में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365

0: 66 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
1: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
3: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
6: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे सर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
7: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत

0: ओडिशा सरकारंको उच्च शिक्षा विभाग आनिछि नुआ सुजोग एडीपी अप्रेंटिस एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम पाठपढा सहित काम सिखिबार सुजोग तृतीय वर्षरे मिलिब स्टाइपेंड आसंतु दक्षता गढ़ीबा चाकरी पाई पथ सुगम करिबा अधिक सूचना पाई साम्स पोर्टल कु जाई आज ही आवेदन करंतु एडीपी आज सिखंतु काली रोजगारक्षम हुंतु
1: आपण मानक एथर एयरलिफ्ट कथाचित्रर एक गीतटी अंकित तिवारी संगीत निर्देशन कंठशिल्पी अंकित तिवारी और अरिजित सिंह गीत रचना कुमार

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: भारतीय रिजर्व बैंक अब से कुछ देर में द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा मुंबई में ये घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। अप्रैल में रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के लिए पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को विश्वसनीय साझेदार मानता है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने देशवासियों से पर्यावरण संरक्षण, सतत जीवन शैली और जैव विविधता की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करने आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक संस्कृति का उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण न केवल एक जिम्मेदारी है बल्कि देश की संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न अंग भी है। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हिंदी थे संवाद सुनले रिले करी सुनालु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र नु आपण माने कार्यक्रम सुनुछन आकाशवाणी संबलपुर केन्द्र नु सुनु निहादे आमर विशेष कार्यक्रम बार बरस भरिछि हस प्रयोजना सौभाग्य कुमार रथ उपस्थापना अभिषेक शर्मा सुनु निहादे कार्यक्रम बार बरस भरिछि हस
3: एनडीए सरकारଙ୍କ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 12 ବରଷ ଭରିଛି ହସ ଉପସ୍ଥାପନା ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ସମ୍ପାଦନା ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ରଥ ଗତ 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ଅର୍ ସବକା ପ୍ରୟାସ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଗତି ଦେଖାଯାଇଛି ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ସରକାରଙ୍କ ଗତ 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଇଥିବା ବିଶେଷ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଆଜି ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଇଥିବା ସୁଗମତା ବା ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଇଥିବା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗତ 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ତଥା ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି 2016 ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଜନା ନବୀକରଣ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ନିବେଶ ଆଧାରିତ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସଂଖ୍ୟା 2016 500ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2,23,000 ଅଧିକ ହୋଇଛି ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଜୁନ୍ 2021 ଆୟକର ବିଭାଗ ଏକ ନୂତନ ଇ ଫାଇଲିଂ ପୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି ଯଦ୍ୱାରା କରଦାତାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଏବଂ ବିଶେଷ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସେବା ମିଳିପାରୁଛି 2017 ଜିଏସ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁ କରାଗଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସରଳ କର ପ୍ରଣାଳୀ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ହୋଇଗଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଥାନେର ଚାର୍ଟେଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମନୋଜ ବାସେର କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ କର ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ସଂଶୋଧନ ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥିରତା ମିଳିଛି
4: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ କର ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ସଂଶୋଧନ ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥିରତାର ଏକ ବୃହତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ ପରୋକ୍ଷ କରର ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କିପରି କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଛବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିରତା ଆସିଛି
3: ସେହିପରି ସରକାରୀ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଡିଜିଟାଲ ସରଳ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ କରିବା ପାଇଁ 2016 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇ ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍ ବା ଜେମ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଗଲା ଜେମ୍ରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ 18,00,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକର ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇସାରିଛି ଜେମ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜଣେ ବିକ୍ରେତା କାମିନୀ ଗୁପ୍ତା କହିଲେ ଯେ ଜେମ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଏହା ସରକାରୀ କ୍ରେତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ
5: ଜେମ୍ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଦଳ ଏହା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଭଳି କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ସବୁବେଳେ ମିଳୁଥାଏ ଯାହା ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମହିଳା ଉଦ୍ୟମୀ ଏବଂ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ସିଧା ସରକାରୀ କ୍ରେତାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିଥାଏ
3: କ୍ଷୁଦ୍ର ଲଘୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଦ୍ୟମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ

0: प्रधानमंत्री सूर्यघर मागणा बिजुली योजना विद्युत बिल ह्रास करिबा सहित परिवेशकु मध्य सुरक्षित करिपारिबे। एहा सहित उभय केन्द्र और राज्य सरकार तरफ 1,38,000 टंका पर्यंत सब्सिडी पाइबे। आज ही पीएम सूर्यघर योजना पाई आवेदन करंतु, निज छातरे सौर पैनल लगांतु।
1: ইহাদে চুপ চুপ চরি চরি সিনেমার এই গীতটা শুনুন। মন্মথ মিশ্রঙ্কর সঙ্গীত সংযোজনা গাইছেন সৌরিন ভট্ট আর নিবেদিতা। গীতকে লিখেছেন শ্রীকান্ত গৌতম।

कार्यक्रम शेष गीत सुनन सिनेमा दीवाना गाइछन बाबुल सुप्रियो अरुण मंत्री लेखानु संगीत थी सजीछन मलय मिश्रा।

गुटे हिंदी सिनेमार गीत थी एज आपण माने हाँ मैंने भी प्यार किया सिनेमार केतेटा गीत सुनुले गीत मान के लेखिथिले समीर आउ संगीत निर्देशना देथिले नदीम श्रवण आपण माने कार्यक्रम सुनुछन आकाशवाणी संबलपुर केन्द्र थु एहेदे समिया दिनर 11 बजबाके जाउछे हिंदी थी संवाद सुनमा रिले करी प्रसार करुछु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र थु।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। चालू वित्त वर्ष के लिए दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से अल्पकालिक उधार दर या रेपो दर को 5.25% पर तटस्थ बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate under the LAF unchanged at 5.25%.
0: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति को 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। बैंक ने अनिवासी भारतीयों और प्रवासी भारतीयों द्वारा इक्विटी उपकरणों में निवेश की सीमा भी बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम श्री मोदी का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरूआत की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की औपचारिक घोषणा करेंगे। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये अत्याधुनिक एक्स बैंड डॉपलर मौसम रडार प्रणालियों और स्वचालित मौसम स्टेशनों के विस्तारित नेटवर्क के साथ मौसम संबंधी प्रेक्षणों को एकीकृत करेगा, जिससे वास्तविक समय में मौसम की निगरानी, पूर्वानुमान की सटीकता और पूर्व चेतावनी क्षमताओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलू ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ଶ୍ରୋତାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର କେନ୍ଦ୍ରଠୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ମିଡିୟମ୍ ୱେଭ୍ଟି 317.5 ମିଟର 945 କିଲୋ ହର୍ସ୍ତି, ଏଫ୍ଏମ୍ ମହାନଦୀତି 101 ମେଗା ହର୍ସ୍ତି। ଇଟାକେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏୟାର ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଥିଗଲେ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏହେଦେ ଆସନ୍ ଶୁନ୍ମା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ। ସବୁନୁ ପହେଲେ ପୁର୍ଖା ଲେଖାଥୁ ଇ ଗୀତ୍କେ ଗାଇଛନ୍ ମୋହନ ସେଠ।

ई खरे आसमियाथी निया पासे कैंसी काम नाय करून खाली जे बाहरे कि खराथी झाऊ मारसी से कथा नुहे से घर भितरे पे जदी दिहू झाल जह बाहर ले गले दिहू पायन आ नून कमी करी झाऊ मारबा सेथिर लागी पवन गतागत करुथवार जागा थी रहून टिके टिके छाड़िकरी सोस नाई कले भी पायन पिउ थाउन खाएबार थी सोस दिन थु टिके ओतका नून गले खाउन बाकी देहे पाटा देखी करी जेते पारबे इ खरा दिने कम तेल मसला दिया सादा खाना खाऊन और खरा दिनिया फल तरबूज काकुड़ी आम लेम्बू लीचू बागिर फल जह खाऊन पेट पुरवार संगे दिहर पानीर कमी के गले पूरा करी पारबा एहदे लव इन टोकियो सिनेमार इ गीतटा के सुनून गीत के लेखिछन हसरत जयपुरी और संगत संगीत निर्देशना शंकर जयकिशन।

0: शब्दांग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
3: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
3: और डोंडी दोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
3: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना, कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
2: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शैडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
3: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
2: जी,
3: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
2: जी,
3: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
2: जी,
3: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
2: श्रोताओं, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है, मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
3: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाश गंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
2: क्या बात है!
3: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
2: क्या बात है! श्रोताओं, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कॉमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
3: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता
2: जी।
3: है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
2: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
3: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता
2: जी।
3: है। यहाँ आज भी लोग पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं
2: जी।
3: इस डाकघर की स्थापना 5 नवम्बर 1983 को हुई थी।
2: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है, यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
3: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाक घर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाक घर किस गांव में पड़ता है?
3: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
2: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
3: कक्षा 4 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है।
4: नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की
3: जय। बहुत अच्छे से शासन कर रहे
4: हैं।
1: शांत शांत, आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
5: हाँ हाँ महाराज, महाराज बताइए, हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर। हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
1: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
6: जी महाराज, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका?
1: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
7: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
1: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
8: जी महाराज, बहुत कृपा।
9: महाराज की जय हो,
10: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
1: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
0: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
1: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
5: महाराज, ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
1: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
5: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़ कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़ कर थे।
1: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
5: धन्यवाद महाराज।
0: अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
5: भाई क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ?
11: मुझे भी नकली मिला, मुझे भी नकली हो सकता
5: है। क्या क्या सबको नकली मिला? तुम भी नकली, तुम नकली फिर आया था।
11: नकली हीरा तो सकता,
5: नकली कैसे हो गया? अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया, सभी ने बोला कि नकली है।
11: महाराज
10: की जय, महाराज की जय, महाराज की जय।
9: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
5: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो हम पूछ ले महाराज।
9: कहिए, मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
5: धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरों की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं महाराज।
9: क्या? और कोई शंका?
5: जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
9: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए, पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
2: महाराज की
12: जय!
2: महाराज की
12: जय!
2: महाराज की
12: जय!
1: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
13: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
14: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
15: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ, अलर्ट हूँ मैं, चल चलूँ।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का ये प्रमुख त्योहार है। ये जनवरी में

मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

0: चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: ଶୁଣୁଥିଲେ NCERT ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4:02ରେ ଶୁଣିବେ ନାଟକ ଶକୁନିର ହସ, ରଚନା ଅର୍ଜୁନ ମୋହନ ସାହୁ, ପ୍ରଯୋଜନା ମୁରଲୀଧର ପଣ୍ଡା। ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30ରେ ଯୁବବାଣୀର ଲାଇଭ୍ ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲୋ ଯୁବବାଣୀ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:10ରେ ଆଦିବାସୀ ଗୀତ କ୍ରମରେ ମୁଣ୍ଡାରୀ ଗୀତ ଶୁଣିବେ, ପରିବେଷଣ କରିବେ ରୋୟାନ ସୁରିନ ଏବଂ ସାଥୀ। ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦିନ ଗୋଟାଏ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରିଲେ କରି ପ୍ରସାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
5: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
4: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। उद्योग संगठन एसोचैम ने

0: आरबीआई के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे।
1: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयरट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के अगरतला में बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की हर सीमा की भौगोलिक और सुरक्षात्मक चुनौतियां अलग अलग हैं, इसलिए सभी सीमाओं पर एक जैसी रणनीति के बजाय स्मार्ट मॉडल अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यावरण को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अनामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अनामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इससे झलकती है। नागालैंड सरकार ने राज्य में तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी खाद्य उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध पान मसाला, सुगंधित और स्वादयुक्त चबाने योग्य उत्पादों के साथ साथ तंबाकू या निकोटीन युक्त किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ पर लागू होता है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक फिसल कर 74,274 पर, जबकि निफ्टी 43 अंक लुढ़क कर 23,374 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोतामाने कार्यक्रम सुनुचन्ति आकाशवाणी संबलपुर केन्द्ररु। सुगम संगीतरी आज शुणु आधुनिक गीत। प्रथमे प्रमोद कुमार पंडा कंठरी ए गीतटी शुणु। गीत रचना दुर्गा माधव पंडा।

0: सुना सुना सुना गाँ हेउ अबा सहर ओडिसावासीको पाई खुशीर खबर
1: कौन कहुनु
0: छातरे सोलार प्यानेल लागिबो 1,38,000 पर्यंत सबसिडी भी मिलिबो
1: आउ इलेक्ट्रिक बिल
0: विद्युत बिल संचयर नुआ संभावना आनिछि पीएम सूर्य घर मागणा बिजुली योजना
2: एथर सुनीति बेहरा कंठरे ए गीतटी शुणंतु गीत रचना डॉक्टर नंदकिशोर पाढ़ी।

0: प्रशासन क्षेत्रले उत्कर्ष प्रतिपादन गरिथिबा व्यक्तिविशेष तथा प्रतिष्ठानगुडीकु 17टी पुरस्कार प्रदान गराजिवो सेथिमध्यरे 10टी स्वर्ण 6टी रौप्य एवं गोटिए जुरी पुरस्कार अन्तर्भुक्त देशव्यापी ई प्रशासन पदक्षेपर सफल कार्यान्वयनर स्वीकृति एवं प्रोत्साहन प्रदान करिबा लक्ष्य नै प्रतिवर्ष एही पुरस्कार प्रदान करा जायथै बोली मंत्रालय सूचना देछि पंजाब राज्य महिला आयोग लुधियानारु 9 जण बालिका निखोज घटनार निज आडु तदंत आरंभ करिछि आयोगर अध्यक्षा राजलाली गिल लुधियाना पुलिस कमिशनरंकु आसंता 8 तारीख सुद्धा विस्तृत रिपोर्ट दाखल पई निर्देश दैछन्ति गत मासरे लुधियानारु 9 जण बालिका निखोज होई जाइथिले अमेरिका ओ ईरान मध्यरे परमाणु प्रसंगकु नै कूटनैतिक आलोचना जारी रहिछि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कहिछन्ति ईरानकु कोनोसी परिस्थितिरे परमाणु अस्त्र हासिल करिबाकु दियाजिबो नाही श्री ट्रम्प कहिछन्ति परमाणु निरस्त्रीकरण नै अमेरिका गुरुत्व प्रदान करुछि एवं उभय देश मध्यरे कोनोसी प्रकारर चुक्ति एहा उपर निर्भर करिवो अन्य पक्षरे अमेरिकार अर्थ सचिव स्कॉट बेसेंट एवं रिपब्लिकन नेता माने कहिछन्ति चीन उपरे आर्थिक निर्भरशीलता ह्रास करिबारे अमेरिका उल्लेखनीय प्रगति करिछि चीन सह वाणिज्य नियंत गत वर्ष 32% ह्रास पाइथिबा समाने कहिछन्ति भारत ब्रिटेन दृष्टिकोण 2035 समीक्षा करिबा उद्देश्यरे नूआदिल्लीरे प्रथम वार्षिक बैठक अनुष्ठित होइ जाइछि वैदेशिक मंत्री डॉ एस जयशंकर एवं ब्रिटेन वैदेशिक सचिव येवेट कुपर बैठक में जोग देथिले उभय नेता अभिवृद्धि प्रजुक्ति विद्या एवं नवसृजन प्रतिरक्षा एवं सुरक्षा जलवायु एवं स्वच्छ शक्ति और शिक्षा क्षेत्र में होइथिबा अग्रगति नै समीक्षा करथिले सारा विश्व रे परिवेश सुरक्षा दिगरे सचेतनता सृष्टि करिबा उद्देश्य रे विश्व परिवेश दिवस आज पालन करा जाउछि जातिसंघ परिवेश कार्यक्रम एक अंश विशेष भाव में 1973 मसीहार प्रतिवर्ष जून 5 तारीख में विश्व परिवेश दिवस पालन करा जाउछि प्रकृति द्वारा अनुप्राणित जलवायु पाई आमर भविष्यत पाई वार्ता नहीं आज विश्व परिवेश दिवस पालन होउछि विश्व परिवेश दिवस अवसर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा वाचस्पति ओम बिर्ला स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रमुख देशवासी जैव विविधतार सुरक्षा लगी आह्वान देते प्रधानमंत्री एक पेड़ मां के नाम अभियान सफलता उल्लेख कर परिवेश सुरक्षा को जन आंदोलन में परिणत करने को सुरत और दमन गस्तरे जाए आज 21,000 कोटी टंकारु अधिक मूल्यर विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करिबे प्रधानमंत्री भारतर 100तम रामसर स्थल भाव उत्तर प्रदेश जयप्रकाश नारायण पक्ष अभयारण्य को मिलला मान्यता द्विमासिक मुद्रानीति घोषणा कला रिजर्व बैंक रेपो हार 5.25% अपरिवर्तित 65 जण विशिष्ट व्यक्तित्व को आसंता 23 तारीख पद्म पुरस्कार प्रदान करिबे राष्ट्रपति संवाद शेष होला
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to dedicate and lay foundation stone of multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in Gujarat today. Centre grants tax exemption to foreign institutional investors on capital gains in government securities. RBI keeps repo rate unchanged at 5.25%, reduces GDP growth projection to 6.6% from 6.9% for the current fiscal. Nepal Foreign Minister Shishir Karnal to arrive in New Delhi on 3-day visit today. World Environment Day being observed, government inaugurates 18 Namo Oxygen Parks in New Delhi. And India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey in Japan this evening. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees spanning the road, power and industrial sectors. The Prime Minister will first visit Hajira and will review ongoing industrial and infrastructure operations before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stone for various projects worth around 2,900

0: अस्पताल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
1: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष पहली अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: A detailed assessment.
3: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
2: At 5.25%.
1: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
4: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्रवाई के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा

0: देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6 करोड़ 40 लाख पौधे लगाए गए हैं।
2: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6 करोड़ 40 लाख वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40 लाख से 60 लाख वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
1: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
3: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे यस एंड माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
4: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरणीय संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमरीका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
5: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं। लोकल फॉर वोकल है, दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की

0: रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामेगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आपणमाने कार्यक्रम शुणुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। कार्यक्रम आम केन्द्ररु प्रचारित होउछि 308.6 मीटर तथा 972 किलोहर्ट्ज जोगे। आमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद शुणिपारिबे एही विज्ञापन परे।

चुटाणी मन मो चाहूची लग ते करती कि पट राणी झुल झुल तु चलु एमती मन को नौ चुटाणी मन मो चाहूची लग ते करती कि पट राणी।

तू कहबु ताब सिनेमा देखे नेबी घर तू बसबु रोसई न करी होटल रे खुआबी जहा तू कहबु ताब सिनेमा देखे नेबी घर तू बसबु रोसई न करी होटल रे।

0: ଏଡି ଶେଷ ହେଲା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଯୁବବାଣୀ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର। ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के विकास को गति देंगी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होंगी। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
2: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: इससे पहले सूरत में प्रधानमंत्री ने हजीरा में वर्तमान औद्योगिक तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे, जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस नए केंद्र से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को मजबूती मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान से कृषि, विमानन, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। असम मंत्रिपरिषद का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल रक्षम प्रसाद आचार्य ने इस अवसर पर नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने

0: सूचना शिक्षा और मनोरंजन बेतार बाणी आकाशवाणी।
1: अरे रीमा, सोलार पैनल लगे दे, सोलार पैनल लगे दे। केबे ठू मोर सब सांग माने कहुतिले, किंतु मु मानिली जेबे प्रधानमंत्री कहिले।
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मु प्रधानमंत्री कहिबा परे सोलार पैनल लगेली, आउ मोर बिजली बिल जीरो आसुची। आपण भी लगांतु।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सह जोड़ी हेबा पई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in।

0: ଶାସ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଣ୍ଡିତ ଟିକେ ଦାତାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ବେହେଲା ବାଦନରେ ଶୁଣିଲେ ରଚନା ବିଲମ୍ବିତ ଆଡ଼ ତାଲ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ତିନତାଲରେ ନିବଦ୍ଧ କଲ୍ୟାଣ ଥାଟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ରାଗ ୟମନ୍। ତବଲା ସଙ୍ଗତ କରିଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ନୟନ ଘୋଷ। ବେହେଲାରେ ସହଯୋଗିତା କରିଥିଲେ ରତ୍ନାକର ଗୋଖଲେ। ସୁରମଣ୍ଡଲରେ ଥିଲେ ରାଜନ ମସିଲକର। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर-18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
2: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: हमारे विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था। आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और ये स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट दिए जाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
3: The negotiating team which came from
4: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
3: ट्रेड अग्रीमेंट फॉरवर्ड।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर

0: लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुग्यानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर कर्नाटक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मॉनसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says smart border project in its final execution stage, pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. साउथ वेस्ट मॉनसून

ये आकाशवाणी का संबलपुर केंद्र है। एफएम 101 मीडियम वेव 317.5 मीटर यानी कि 945 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही साथ न्यूज ऑन एयर ऐप में आप सुन रहे हैं आपका मासिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम मानस। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त तुलिका। मानस न केवल एक पत्रिका कार्यक्रम है बल्कि विचारों, ज्ञान, संस्कृति और इतिहास की एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ते हुए वर्तमान को समझने और भविष्य के प्रति सजग बनने की प्रेरणा देती है। इस मासिक अंक में हम चर्चा करेंगे महीने भर

0: के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के बारे में, महान विभूतियों की जयंती, पुण्यतिथियों, साहित्य, समाज, संस्कृति और समसामयिक विषयों की, साथ ही जानेंगे उन व्यक्तित्वों के बारे में जिनके विचार और योगदान आज भी हमारे जीवन को दिशा प्रदान करते हैं। तो आइए ज्ञान, चिंतन और प्रेरणा के सुंदर सफर की शुरुआत करें और सुने मानस, मासिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम। श्रोताओं, आपको बताना चाहूंगी कि हर वर्ष 5 जून यानी आज के दिन विश्व भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का स्मरण कराता है और पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक होने का संदेश देता है। पर्यावरण केवल हमारे आसपास के पेड़ पौधों, नदियों, पर्वतों और वायु तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का आधार है। स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और हरित वनस्पतियां ही स्वस्थ जीवन की नींव हैं। लेकिन बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन ने पर्यावरण के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। आज आवश्यकता है इस बात की कि हम केवल पर्यावरण संरक्षण की बातें ना करें, बल्कि उसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। एक पौधा लगाना, जल का संरक्षण करना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना और स्वच्छता बनाए रखना जैसे छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं, क्यों, है ना? भारतीय संस्कृति में प्रकृति को सदैव पूजनीय माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने वृक्षों, नदियों और जीव जंतुओं के संरक्षण का संदेश दिया है। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। विश्व पर्यावरण दिवस हमें यह संदेश देता है कि पृथ्वी केवल हमारी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी धरोहर है। यदि हम आज पर्यावरण की रक्षा करेंगे तभी भविष्य सुरक्षित और समृद्ध होगा। आइए इस अवसर पर हम सभी यह संकल्प ले कि प्रकृति के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में अपना सक्रिय योगदान देंगे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि हर वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना। स्वस्थ जीवन के लिए केवल पर्याप्त भोजन ही नहीं बल्कि सुरक्षित भोजन भी उतना ही आवश्यक है। दूषित या अस्वच्छ भोजन अनेक गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और उचित भंडारण पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हमें यह संदेश देता है कि खेत से लेकर थाली तक खाद्य पदार्थों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। स्वच्छ भोजन न केवल अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है बल्कि एक स्वस्थ और सशक्त समाज के निर्माण का आधार भी है। आइए इस अवसर पर हम सभी सुरक्षित, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन अपनाने का संकल्प लें और अपने परिवार और समाज को भी इसके प्रति जागरूक करें। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी संबलपुर का मासिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम मानस। भारत जैसे बहुभाषी देश में हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि संवाद, संपर्क और सांस्कृतिक एकता का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। राजभाषा हिंदी का उद्देश्य देश के प्रशासनिक कार्यों को जन सामान्य के और अधिक निकट लाना तथा भाषाई समन्वय को सुदृढ़ करना है। इन्हीं विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज के इस विशेष अंक में हम लेकर आए हैं परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं संबलपुर BSNL के सहायक महाप्रबंधक श्री विजय कुमार इंदिवर और अनुविभागीय अधिकारी श्री गजानन प्रधान जी। इनसे बातचीत कर रहे हैं मनीष भट्टाचार्य जी।
1: श्रोताओं नमस्कार। कुछ ही महीनों की बात है, उसके बाद फिर एक बार हम उसी सफर की ओर आगे बढ़ेंगे जिसका इंतजार हमें हर साल रहता है, प्रतिवर्ष रहता है, और वो है सितंबर का महीना आते ही हम पूरे देश में राजभाषा हिंदी पखवाड़ा मनाना शुरू करते हैं। लेकिन आपको भी ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आकाशवाणी संबलपुर ने एक ऐसा प्रयास आरंभ किया है इसी महीने से, जहां हम हर महीने संबलपुर के अलग अलग विभागों में राजभाषा की गतिविधियों को लेकर आप तक पहुंचाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह अलग अलग विभाग यहां राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए अपने अपने विभाग में काम कर रहे हैं और तमाम लोगों की उसमें शिरकतदारी है, लोग उसमें साथ जुड़ रहे हैं। आज इस क्रम में हमने सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत हमने की है भारत संचार निगम लिमिटेड नामक संस्था से, जिसे आप सब जानते हैं। ये

0: वो संस्था है जिसने सालों से दशकों से भारत को कनेक्टिविटी प्रदान की है, पहले लैंडलाइन के जरिए और अब तो इंटरनेट के जरिए हमारे साथ 24 घंटे इसका साथ रहता है। और इस विषय पर बोलने के लिए, आपके साथ राजभाषा की तैयारियों को लेकर आपके साथ साझा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं, और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए, तजुर्बे को आपके साथ साझा करने के लिए मौजूद हैं विजय कुमार इंदिवर। विजय कुमार इंदिवर संबलपुर के भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के दफ्तर में AGM है, यानी सहायक महाप्रबंधक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय जी। आपसे पहले भी मुलाकात हो चुकी है हमारी राजभाषा के सिलसिले में। आज आप सुनने वालों को ये बताइए कि BSNL संबलपुर का जो प्रयास है राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए, वो कम से कम शब्दों में अगर आप कहना चाहें तो किस तरह से वो आगे बढ़ रहा है।
1: ये राजभाषा का प्रयास करने में, हम पहले तो जो हमारे ऑफिस में जो पत्राचार होते थे, जो HR सेक्शन के पत्राचार, अभी बायलिंगुअल में होना शुरू हो गया है, तो उस तरह से हमने शुरुआत किए हैं। और जो भी प्रतियोगिता हम आयोजन करते हैं, जो हमारा जो होता है हिंदी पखवाड़ा, उसमें हम प्रतियोगिताएं करते हैं, हमारे जितने भी स्टाफ हैं उनके फैमिली मेंबर जो होते हैं उनके साथ में एक प्रतियोगिता आयोजन होता है, 15 दिनों का प्रचार होता है, और इस तरह से है। और इस तरह से हम ये करते हैं।
0: संबलपुर में वैसे तो मूलतः संबलपुरी और उड़िया भाषा का ही चलन है, तो इंदिवर साहब, क्या आपको ऐसा लगता है कि राजभाषा को लेकर जब आप लोगों के बीच जाते हैं अपने विभाग में, तो स्वीकृति उसी तरह की मिलती है जैसे मिलनी चाहिए, या फिर कहीं कोई लोगों में शंका या कहीं कोई शक शुभावा जैसी कोई बात होती
1: है? ऐसी कोई नहीं है। हिंदी भाषा में ऐसे कॉन्वर्सेशन में तो हमेशा कॉन्वर्सेंट है, सभी बातचीत करते हैं। और हिंदी में जितने भी, जैसे हमारे एक सर्कल ऑफिस से भी हमारा एक आयोजन किया था, वर्कशॉप किया था, उसमें लोगों ने, हमारे स्टाफों ने बहुत पुरजोर भाग लिया था उस प्रतियोगिता में। ऐसे कोई हमारा कोई जो कहते हैं अस्वीकृति, ऐसा कुछ नहीं है। सब चाहते हैं कि हिंदी में, राजभाषा में कम्युनिकेशन करेंगे।
0: सुनने वालों को ये बताना यहाँ जरूरी है कि राजभाषा जो विभाग है ये सीधे गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, और गृह मंत्रालय ने ऐसे कुछ मापदंड बना रखे हैं, उन्हीं मापदंडों पर चलना होता है हर विभाग को। तो आपके पास भी कुछ ऐसे गाइडलाइंस होते होंगे, तो यदि आप उन गाइडलाइंस को अगर थोड़ा साझा करें सुनने वालों के साथ।
1: गाइडलाइंस तो
0: मतलब जैसे आपको वर्कशॉप करना है, या फिर आपको नराकास के साथ एक संबंध बना के रखना है पत्रों के द्वारा।
1: नराकास से हमारा जैसे क्वार्टरली जो होता है कम्युनिकेशन तो होता ही है, और वर्कशॉप हमारे जेहेतु स्टाफ कम है, तो वर्कशॉप हमारे सर्कल ऑफिस से कंडक्ट करते हैं, तो यही है हमारा जो वर्कशॉप जो है जिसमें भाग।
0: एक और बात होती है इंदिवर साहब, आपने भी महसूस किया होगा कि जो आपका स्थानीय प्रबंधन है, जो लोकल मैनेजमेंट है, तो संबलपुर BSNL का जो लोकल मैनेजमेंट है, अगर मैं उसी की बात करूं, उसका भी एक बहुत बड़ा सहयोग होना चाहिए। आप जब भी कोई इस तरह का कोई अलग से प्रयास करते हैं या मुहिम को या शुरू करते हैं, तो आपको किस तरह का सपोर्ट?
1: मैनेजमेंट तो पूरी सपोर्ट करती है हिंदी भाषा में हमें कम्युनिकेशन करने के, और हम भी उसको बढ़ावा देते हैं।
0: उसमें एक ये भी व्यवस्था है कि आपको उन्हें कक्षाओं के लिए भेजना होगा, परीक्षा देनी होगी, जो आपके विभाग के कर्मचारी हैं उसमें प्रज्ञा है, प्रवीण है, ये सब है, तो ये इसके बारे में कुछ बताइए सुनने वालों को।
1: प्रज्ञा प्रवीण परीक्षा है तो हुआ नहीं है।
0: तो आप अपने विभागीय कर्मचारियों को हिंदी की ओर खींचने के लिए, आम तौर पे जैसे कहीं कहीं कार्यालयों में हिंदी शब्द का चलन होता है, तो ऐसे आपके कार्यालय में फिर नोटिंग आदेश,
1: नोटिंग फाइल होती है, प्लस लेटर भी जो होते हैं वो भी किया जाता है बायलिंगुअल, जैसा मैंने कहा बायलिंगुअल ऐसे किया जाता है।
0: तो फिर आप ये बताइए कि अभी जैसे उन नोटिंग में आप किसका सहारा लेते हैं? खुद ही आप लोग के यहाँ जो कर्मचारी हैं, जो आपके विभाग में, वो खुद ही उस तरह की हिंदी अपने लिखते हैं, या फिर किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल
1: से वो लोग कन्वर्ट कर लेते हैं?
0: कौन सा भी आप इस्तेमाल कर?
1: अभी हिसाब गूगल ट्रांसलेशन करके करते हैं, और अगर कुछ मॉडिफाई करना तो खुद कर लेते हैं, पूरा तो कंप्लीट गूगल ट्रांसलेशन नहीं कर पाता है, गूगल ट्रांसलेशन से सहारा लेके कर लेते हैं।
0: एक कंठस्थ भी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें इस तरह के अनुवाद किए जाते हैं, क्या आपके विभाग में इसका कोई चलन
1: नहीं,
0: है?
1: नहीं
0: है। अच्छा, आप ये बताइए कि जो वर्कशॉप यानी जो कार्यशाला आप आयोजित करते हैं, अभी हाल ही में आपने कोई कार्यशाला आयोजित की है, उसके बारे में जरा बताइए कि आपने शुरुआत कैसे की, उसकी विषय कैसे चुना, लोगों को कैसे बुलाया, प्रतिभागिता क्या थी और कहां किया?
1: इसके बारे में मैं प्रधान जी को बोलूंगा, वो कार्य और में।
0: दोस्तों आपको हम बता दें कि आज हमारे इस कार्यक्रम में बीएसएनएल के

0: एक और अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप अपनी पहचान सुनने वालों को खुद बताएं।
1: हेलो सर, नमस्कार। मैं गजानन प्रधान, मैं SDO BSNL। और लास्ट टाइम जो हमारा ऑफिस में कार्यशाला हुआ था, उसके लिए हम बाहर से हमारा BSNL का ऑफिसर आए थे। हम लोगों को हमारा स्टाफ से भी हम उनसे ओवर फोन और मैं हम लोग लिख के भी कुछ उनको दिए थे, तो सब स्टाफ भी आए थे। उसमें अच्छा तरह वो मीटिंग हुआ था, कंडक्ट हुआ था।
0: प्रधान साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई। आप मुझे ये बताइए कि आप भी राजभाषा से जुड़े हुए हैं, तो कितना समय आपको राजभाषा के लिए देना होता है और आपका कितना, चूंकि आप, जैसा मुझे जानकारी है कि BSNL की जो कनेक्टिविटी वाला जो एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी पूर्ण कार्य है, उसमें भी आप संलग्न हैं, तो आप ये बताइए कि आप राजभाषा के साथ जुड़कर इस काम को कैसे अंजाम देते हैं?
1: ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक तो है जो आपको हिंदी का भाषा का हिंदी में लिख के देना पड़ता है, और कोई चिट्ठी को हिंदी और दो भाषी में हम लोग करके वो भेजते हैं। और जो मेन फंक्शन है हमारा BSNL का जो नेट कनेक्शन, उसको भी हम लोग स्टैंडर्ड करके हम भेजते हैं। इस तरह हम लोग दोनों को टाइम देके काम कम्प्लीट करते हैं।
0: गौरंग प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस बातचीत में शिरकत की और आपने बताया कि किस तरह से आप कार्यशाला का आयोजन करते हैं। मैं फिर एक बार इंदिवर जी आपसे मुखातिब हूं। आप ये बताइए कि ये जो वो अलग अलग प्रतिशत होता है कार्यों का, ये तो ग क्षेत्र है। सुनने वालों को हम ये बता दें कि पूरे देश को तीन क्षेत्रों में बांटा गया है, क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र। क क्षेत्र में पूरी तरह से हिंदी भाषी राज्य है, ख क्षेत्र में अगर कहें तो जैसे पंजाब है, गुजरात है, ऐसे राज्य हैं, और ग क्षेत्र में बंगाल, उड़ीसा या दक्षिण भारत के भी राज्य हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो प्रतिशत का जो बंटवारा होता है काम का, कि इतने प्रतिशत चिट्ठियां होनी है, इतने प्रतिशत नोटिंग होनी है, आप उसका ध्यान रखते हैं और किस तरह से उसका ध्यान रखते हैं?
2: हम वो रजिस्टर बना के रखें, जितने लेटर जो वगैरह जो होते, मैंने ग से ओ क्षेत्र जो हिंदी भाषी वहाँ ज़्यादा तो हमारा कम्युनिकेशन होता नहीं है, बहुत ही लिमिटेड, मैंने हुआ नहीं है मतलब उनसे, क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन होता है डायरेक्ट सर्कल ऑफिस उड़ीसा के भीतर में होता है, तो इसलिए हमारा ये है। बाकी जो हमारे जो हिंदी बाइलिंगुअल जो होता है उसका हम रजिस्टर रखते हैं, उसका रिकॉर्ड करते हैं, उस हिसाब से प्रतिशत हम बाहर करते हैं।
0: मगर आपको ऐसा लगता है कि हम आप उस प्रतिशत के लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं, वहां तक पहुंच रहे हैं?
2: हाँ, वहां तक पहुंच रहे हैं।
0: सुनने वालों को ये बताना जरूरी है कि केंद्र सरकार ने कुछ लक्ष्य निर्धारित क्षेत्र के हिसाब से, और उस लक्ष्य तक आपको पहुंचना है। उसमें आपने कितने पत्र लिखे, आपने कितने नोटिंग की, आपने कितने कार्यालयीन ज्ञापन जारी किए हिंदी में, और फिर बाइलिंगुअल का भी एक मामला है, मतलब द्विभाषी जिसे हम कहते हैं, तो आपके दफ्तर में भी द्विभाषी का चलन होगा?
2: हाँ,
0: जो नेम प्लेट या बोर्ड्स होते हैं दरवाजों पर,
2: स्टैंप सभी हमारा द्विभाषी है, जो नेम प्लेट से स्टैंप भी हमने इशू कराया है, द्विभाषी स्टैंप हम इस्तेमाल करते हैं।
0: आप हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, या फिर हम आपसे ये कहें कि जब आपके क्षेत्र के जो कार्यकर्ता है, फील्ड वर्कर जो है, जब वो जाते हैं कहीं BSNL की कनेक्टिविटी को लेकर दूर दराज के गांव में, तो वहां पर उनको हिंदी का कैसा माहौल नजर आता है?
2: नहीं, ग्रामीण इलाके में तो हिंदी का उतना, मैंने जो सब्सक्राइबर होते हैं वो तो ज्यादातर उड़िया का ही इस्तेमाल करते हैं, तो हिंदी उतना कॉन्वर्सेशन के लिए हिंदी इस्तेमाल नहीं होता है, उड़िया भाषा में ही ज्यादातर होते हैं, क्योंकि वो भाषा यहाँ उड़िया ज्यादा चलन है।
0: कभी BSNL ने इस पर सोचा है कि हिंदी को लेकर कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों में प्रतिभागिता हो? कभी इस तरह की कोई योजना आपके दिमाग में हो, या आने वाले दिनों में अगर आप इस तरह की कोई कार्यशाला करें जहां पर हिंदी कविताओं का समावेश हो, हिंदी कहानियां कही जाएं, कुछ ऐसा आपने कभी सोचा है? इस तरह का कोई प्रस्ताव आपने कभी अपने कार्यालय में दिया हो?
2: हमारे कार्यालय में सिर्फ पखवाड़े के समय में होता है, प्रतियोगिता वगैरह हमारा होता है जो 15 दिन का पखवाड़े,
0: उसमें आप क्या करते हैं जरा उसके बारे में बताएंगे, तैयारियां किस तरह से करते हैं?
2: कविता, निबंध और ट्रांसलेशन, जो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन जो है वो, उसकी प्रतियोगिता हम रखते हैं।
0: और पुरस्कारों का वितरण किस तरह से किया जाता है?
2: पुरस्कारों का वितरण किया जाता है उसमें।
0: ये जो प्रतियोगिताएं आप आयोजित करते हैं, इसमें प्रतिभागिता जो होती है, जो शिरकत करते हैं, उनके लिए क्या न्यूनतम मापदंड क्या है, कौन कौन उसमें शिरकत कर सकते हैं?
2: सभी करते हैं, बच्चे और अभिभावक, बड़े जो है हमारे स्टाफ के अभिभावक, सभी कोई,
0: मतलब स्टाफ के परिवार वाले उसमें शामिल हो सकते हैं?
2: हाँ,
0: ये तो हमारे यहाँ ये व्यवस्था हमारे विभाग में, मैं अगर आकाशवाणी की बात करूं तो अभी तक हमने वो शुरुआत नहीं की है, लेकिन हम बताएं कि हमारे साथ हमारे निर्देशक अभियांत्रिकी, जो हालांकि अभी तक माइक्रोफोन के सामने तो नहीं है, लेकिन हमें पूरी तरह से उनका सहयोग मिल रहा है, श्री संतोष कुमार प्रधान जी हैं, तो हम उनके साथ मिलकर हमारे मुख्यालय को ये सूचित करें कि अगर वो हमें इस तरह की छूट दें, तो ये बहुत अच्छा आपने कहा है इंदिवर साहब, सुनकर अच्छा लगा। और ये बताइए कि निर्णायक मंडली के लिए आप कैसे चयन करते हैं प्रतियोगिता में, वो जो आप 15 दिन का पखवाड़ा चलाते हैं? मैं ये चाहूंगा कि गजानन प्रधान जी बताएं कि आप जो निर्णायक लोगों का चयन करते हैं, निर्णायक मंडली जो होती है आपकी, उसके क्या तरीके होते हैं, उसका मापदंड क्या होता है?
1: हम उनके लिए जो होता है

0: है वो हम लोग बाहर से आदमी लोगों को जो कि स्टैंडर्ड उनका स्कूल का कॉलेज का उनको थोड़ा हमारे ऑफिस से ला के उन लोग उनको करते हैं ये भाई इतना कितना स्कोर होगा कौन का स्टैंडर्ड कैसा होगा उनको करते हैं।
1: उसमें आप ये बताइए कि गजानन प्रधान जी की जब आप इस तरह के लोगों को बुलाते हैं वहां से, तो वहां पर आपके विभाग के लोग की तैयारी किस तरह की होती है? मतलब उनको उन्हें कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि पहले से पहचान हो तो उनको थोड़ी थोड़े ज्यादा अंक मिल जाएं? कोई ऐसा
0: नहीं,
1: ऐसा कुछ नहीं?
0: ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लोग बाहर से आते हैं, वो लोग भी खुद हम लोगों को हेल्प करते हैं, क्या होना चाहिए कैसा होना चाहिए वो लोग भी हमको थोड़ा ये करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। वो लोग भी खुद से आते हैं और सब देख के बड़ा खुश हो भी जाते हैं।
1: मैं फिर एक बार मुखातिब हूं इंदिवर साहब आपसे। आप ये बताइए कि मुझे जहां तक जानकारी है 2024 या 25 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 25 का ही वो दौर था, दिल्ली से एक सर्वेक्षण की टीम आई थी, तो उस वक्त संबलपुर के लगभग सभी कार्यालयों में कुछ कहीं कमी कुछ कहीं त्रुटि का उन्होंने जिक्र किया था। तो क्या आपको लगता है कि आप भी उसमें शामिल थे, या फिर आपको ऐसा लगता है कि उस त्रुटि को आपने दूर कर लिया हो? ऐसा
2: नहीं,
1: कुछ
2: त्रुटि थी। हमने उस समय जो रिपोर्ट आई थी उस समय कमिटी ने कहा था त्रुटियां हमारे बाहर के थे, उसका हम पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मतलब पूरी तो नहीं कर पाए लेकिन पूरी कोशिश करेंगे उसको, जो भी हो शॉर्ट कम मैंने जो कमी थी उसको पूरी करने की कोशिश।
1: सुनने वालों को आप कम से कम शब्दों में साझा करना चाहेंगे कि वो त्रुटि किस तरह की थी?
2: जैसे हमारे जो स्टैम्प वगैरह थे जो बाइलिंगुअल नहीं थे, हमारे पत्राचार भी उस समय बहुत कम थे, मतलब बाइलिंगुअल में बहुत कम थी, उसको हमने पूरा किया है। कुछ कमियां रह गई हैं जैसे कि टेंडर वगैरह जो है फ्लोट करने के लिए, वो क्योंकि वो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है उसमें जरी कमी है, उसको भी हम बहुत जल्दी पूरा करने की कोशिश।
1: तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आज इंदिवर साहब से बात करके बीएसएनएल संबलपुर के एजीएम सहायक महाप्रबंधक और एसडीओ साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं श्री गजानन प्रधान जी, इनसे बातचीत करके ये बात तो बिल्कुल साफ है कि एक अच्छे चुनिंदा स्तर पर राजभाषा को ले जाने का प्रयास जारी है बीएसएनएल संबलपुर के द्वारा, और आने वाले दिनों में वो कोशिश पूरी होगी। मुझे याद आता है अरुण जेटली जी संसद में एक बार उन्होंने अपने भाषण में एक बात कही थी, मैं उसी शेर से आज की जो बातचीत है जो वार्तालाप है इसे समाप्त करना चाहूंगा। उनसे कहा गया था कि कब तक आप ये कंप्लीट कर लीजिएगा, कब तक पूरी कर लीजिएगा, कब तक आपका काम पूरा हो जाएगा। संसद में किसी ने पूछा, अरुण जेटली साहब ने कहा था कुछ तो फूल खिलाए हमने कुछ और खिलाने बाकी, कुछ तो फूल खिलाए हमने कुछ और खिलाने बाकी हैं, मुश्किल ये है कि इस बाग में अभी भी कांटे कई पुराने हैं। तो शायद बीएसएनएल में भी ऐसे कांटे अगर हों तो गजानन प्रधान साहब और इंदिवर साहब के संयुक्त प्रवास से के प्रयास से संयुक्त प्रयास से उन सभी कांटों को उखाड़ फेंकने की जो मुहिम शुरू हुई है वो पूरी होगी, और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि 2026 में जो हिंदी पखवाड़ा मनाया जाएगा उसमें बीएसएनएल संबलपुर में अधिक से अधिक राजभाषा में शिरकत होगी, अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल होंगे। मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगा इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार पर केंद्रित परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे बीएसएनएल के सहायक महाप्रबंधक श्री विजय कुमार इंदिवर और अनुविभागीय अधिकारी श्री गजानन प्रधान जी। इनसे बातचीत कर रहे थे श्री मनीष भट्टाचार्य जी। श्रोताओं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं कि जून में और क्या क्या दिन है जो हमें प्रेरित करते हैं और जिनसे हम कुछ संदेश लेते हैं। श्रोताओं, आपको बताना चाहूंगी कि 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य बाल श्रम की समस्या के प्रति जागरूकता बढ़ाना और प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा तथा बेहतर भविष्य का अधिकार दिलाना है। बच्चे किसी भी राष्ट्र की अमूल्य धरोहर होते हैं। उनका स्थान विद्यालय, खेत का मैदान और सीखने का वातावरण है, न कि श्रम और कठिन परिस्थितियों में काम करने का स्थान। गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानता के कारण अनेक बच्चे आज भी बाल श्रम के लिए विवश है। यह दिवस हमें यह याद दिलाता है कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। शिक्षा, जागरूकता और सहयोग के माध्यम से ही बाल श्रम जैसी समस्या को समाप्त किया जा सकता है। आइए इस अवसर पर हम संकल्प लें कि हर बच्चे को शिक्षा, सम्मान और सुरक्षित बचपन का अवसर मिले ताकि वे देश के उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। इसी के साथ ही आगे बढ़ते और जानते हैं कि 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस कैसे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है स्वैच्छिक रक्तदान के महत्व के प्रति

लोगों को जागरूक करना और रक्तदाताओं के अमूल्य योगदान का सम्मान करना। रक्तदान एक ऐसा महान कार्य है जो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। दुर्घटनाओं, गंभीर बीमारियों, शल्य चिकित्सा तथा अन्य आपात परिस्थितियों में रक्त की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे समय में रक्तदाताओं का योगदान अनमोल सिद्ध होता है। स्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित होता है और इससे किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। एक यूनिट रक्त कई लोगों के जीवन को बचाने में सहायक हो सकता है। विश्व रक्तदाता दिवस हमें मानवता, सेवा और परोपकार की भावना को अपनाने का संदेश देता है। आइए हम सभी स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूक बने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। रक्तदान महादान, जीवन का अमूल्य उपहार है। श्रोताओं, अब हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। गाने के बोल है आने वाला पल, जिसे गाया है किशोर कुमार ने फिल्म गोलमाल से।

श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि जून कितना महत्वपूर्ण है महीना, और इस महीने हम 21 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। इस दिन का उद्देश्य है योग के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना। योग भारत की प्राचीन और अमूल्य विरासत है, जो शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने का माध्यम है। नियमित योगाभ्यास न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि मानसिक तनाव को कम कर मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है। आज की व्यस्त जीवन शैली में योग का महत्व और भी बढ़ गया है। यह हमें स्वस्थ, अनुशासित और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। केवल योग व्यायाम नहीं, बल्कि एक समग्र जीवन पद्धति है, जो हमें स्वयं से और प्रकृति से जोड़ती है। आइए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम सभी योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लें और स्वस्थ तथा खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। श्रोताओं, आज मानस में हम स्मरण कर रहे दो ऐसी महान विभूतियों का, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण में अमूल्य योगदान दिया। अमर क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पामुलपर्ती वेंकट नरसिम्हा राव जी। श्रोताओं, इसी के साथ मानस हिंदी मासिक पत्रिका कार्यक्रम का यह अंक यहीं संपन्न होता है। आज की प्रस्तुति में हमने विभिन्न महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवसों, महान विभूतियों की जयंतियों तथा समाज, संस्कृति और साहित्य से जुड़े अनेक प्रेरक प्रसंगों पर बातें की है। इन सभी विषयों का उद्देश्य केवल जानकारी देना ही नहीं, बल्कि जीवन में सकारात्मक मूल्यों, जागरूकता और संवेदनशीलता का संचार करना भी है। आशा है कि कार्यक्रम का यह अंक आपको ज्ञानवर्धक, विचारोत्तेजक और प्रेरणादायक लगा होगा। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमारे लिए सदैव महत्वपूर्ण हैं। इसी आशा के साथ कि अगले अंक में फिर नई जानकारियां, नई प्रेरणाओं और नए विचारों के साथ आपसे मुलाकात होंगी। दीजिए अपनी दोस्त तुलिका को इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।

0: श्रोतले मासिक साहित्य हिंदी साहित्य पत्रिका कार्यक्रम मानस आकाशवाणी संबलपुर वर्तमान शुणु संबलपुरी मुख्य संवाद
1: आकाशवाणी संबलपुर मुख्य खबर संगे मुई आशुतोष पाणिग्राही अर्थनैतिक अभिवृद्धि और परिवेश संरक्षण भितर तालमेल रखिकी सबुज भविष्य दिगे आगे बढ़ुचे भारत कहले प्रधानमंत्री डामन नुआ शिक्षक मान को देले नियुक्ति पत्र सीमापार अनुप्रवेश के रोकवार लगे आयवाबचर कार्यकारी हवा स्मार्ट सीमा प्रकल्प सूचना देले स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह 2025-26 बछरे देशर जीडीपी 7.7% बढ़वा बोली आकलन गिलगिट बाल्टिस्तान होउचे भारतर अविच्छेद्य अंग कहला वैदेशिक व्यापार मंत्रणालय तीनदिनिया भारत गस्त न आसिकरी आज नुआदिल्ली पहुंचिछन नेपालर वैदेशिक व्यापार मंत्री शिशिर खानाल आंडामान द्वीपर पूर्वतटन आविष्कार होइछे प्राकृतिक गैस कहले केन्द्रमंत्री हरदीप पुरी ଫ୍ରାନ୍ସ ଗସ୍ତ ନ ଅଛନ୍ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ୍ ଏପି ସିଂ ଅର୍ଲିଏନ୍ସ ଏୟାରବେସ୍ ନୁ ଉଡ଼ାଲେ A400M ବିମାନ 26/11 ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତାର ପ୍ରିମିୟର ଥି କଙ୍ଗନା ରଣାୱତଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକଟି ହେଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଉତ୍ତରୁ କରାଯିବା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମନ୍ତି ଏବେ ଦେବସ୍ନାନ ପୁନିନୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ତକ ସବୁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବକେ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ ପୁରୀ ରାମଚଣ୍ଡୀ ବେଲାଭୂମି

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में